0: मैं तो ट्रक जो सारे पाकिस्तान में तो तकरीबन कह लें
1: जी
0: कि जहाँ जहाँ ट्रक का काम ऐसा होता है कि एक रूट नहीं होता,
1: जी
0: जिधर का माल मिल गया उधर उठा
1: जी
0: गया और
1: जी
0: चल
1: जी
0: दिए।
1: जी और मज़े की बात यह है, मैं भी उस ज़माने में पंजाब में था, अब 1970 की जुदाई थी, इस्लामाबाद में मैं था, तो बहुत आना जाना बसों में, ट्रकों में, वैगनों में होता था। जिधर जाओ एक ही नई आवाज़ सुनाई देती थी। हम कहते थे कि ये कौन है ये जो इस कदर तेज़ी से मकबूल हुआ। उसमें मैंने कहीं सुना था आपको कहते हुए कि इसमें जापान की टेक्नोलॉजी जो कैसेट्स की है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
0: उसकी वजह ये थी कि पहली बात तो ये आबिद भाई कि इतनी जल्दी से मैं सामने नहीं आया,
1: जी
0: उसके पीछे एक स्ट्रगल का एक
1: जी
0: तवील दौर है। और फिर उस वक्त दो ही इदारे थे पाकिस्तान में,
1: जी रेडियो पाकिस्तान,
0: पाकिस्तान
1: बाकी
0: टेलीविज़न
1: रेडियो
0: और रेडियो पाकिस्तान,
1: जी
0: और वहाँ क्वालिटी होती थी।
1: जी
0: ये नहीं होता था कि जो भी आर्टिस्ट आए अंदर उसको माइक के
1: जी
0: सामने
1: बेशक
0: बिठा दिए,
1: बेशक
0: वो तो बाकायदा एक प्रोसेस से गुजर के वो कैमरे के सामने या माइक के सामने
1: जी
0: जाता था।
1: जी
0: तो उस प्रोसेस पे मैं पूरा नहीं उतरता था, तो इसलिए मुझे 12-14 साल मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ी।
1: अच्छा
0: और फिर उस दौरान हमारे मुल्क में कैसेट, आम कैसेट का रिवाज
1: जी
0: हुआ।
1: अच्छा
0: एक तो ख़ास कैसेट थे सुपूल, बहुत पुराने
1: जी जी बड़े
0: जो बड़े
1: वाले
0: बड़े घरों में चला
1: जी जी
0: करते थे,
1: जी
0: लेकिन
1: ये जो
0: आम,
1: कॉम्पैक्ट कैसेट था
0: हाँ आम बंदे तक पहुंचना इस
1: जी
0: कॉम्पैक्ट कैसेट का, वो जापान
1: जी
0: की टेक्नोलॉजी,
1: जी जी
0: वो मुझे अपने सुनने वालों तक ले गई। वो फैसलाबाद की एक रिकॉर्डिंग कंपनी थी,
1: अच्छा
0: उन्होंने मेरी आवाज़ कहीं उसी कैसेट के थ्रू, नॉन प्रोफेशनल आवाज़ थी,
1: जी
0: कोई उसका प्रॉपर कोई मिक्सिंग नहीं थी,
1: जी जी
0: कहीं तबला
1: किसी
0: ऊपर
1: महफिल
0: चढ़ा
1: की,
0: हुआ
1: हाँ
0: था,
1: किसी
0: हाँ
1: महफिल की
0: तबला ऊपर
1: रिकॉर्डिंग,
0: चढ़ा
1: हाँ
0: हुआ
1: जी
0: था
1: जी
0: तो कहीं हारमोनियम
1: हारमोनियम
0: चढ़ा था,
1: जी जी
0: आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी।
1: जी
0: लेकिन वो जहाँ दीदा आदमी था या एक बिजनेसमैन था, उसने आवाज़ में कुछ महसूस किया तो उसने बुलाया और फिर प्रॉपर मुझे रिकॉर्ड किया 77 अक्टूबर में।
1: जी जी
0: तो फिर उसके बाद अल्लाह जल्ले शानू ने मेरा पहला वॉल्यूम ही हिट कर दिया,
1: जी
0: इधर
1: जी
0: ज़िंदगी का जनाजा
1: जनाजा,
0: उठेगा,
1: क्या बात है,
0: दिल
1: वाह
0: लगाया था दिल लगी के लिए,
1: जी जी जी
0: तो वो मुझे यहाँ आप तक ले आया। फिर
1: जी जी टेलीविज़न में आपका दाखला पहली बार कब हुआ?
0: टेलीविज़न पहला मेरा दाखला फरमाइशी सफारशी था,
1: अच्छा
0: वो तारिक अजीज साहब का एक प्रोग्राम चला करता था
1: नीलाम्बर,
0: नीलामगढ़।
1: हाँ मेरा भी उससे ताल्लुक़ रहा है, मैं उसके सवालात बनाता रहूँ एक ज़माने में।
0: उस वक्त वो कराची से चला
1: जी
0: करता,
1: जी
0: ब्लैक एंड
1: जी जी
0: वाइट था।
1: जी जी
0: तो एक हमारी पेंट फैक्ट्री थी वहाँ
1: हाँ हाँ
0: सिग्मा के नाम से,
1: जी
0: तो वो उनको बिजनेस देती थी। तो उस में एक जीएम थे, जनरल मैनेजर थे, उनका ताल्लुक मियांवाली से था।
1: अच्छा
0: तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर तारिक अजीज साहब को, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनसे गुजारिश की,
1: जी
0: तो उन्होंने मुझे कोई 4.5 मिनट का टाइम दे दिया। उसमें
1: अच्छा
0: उसमें पहला मेरा सरायकी का गाना था, क्यों डिता ईसा को रोल बेपरवा ढोला,
1: वाह
0: अजे ताई याद है नो वेले जदों वस्ते हासे कोल
1: वाह
0: बेपरवा ढोला, ये गाना उसमें 73 में ऑन एयर गया।
1: जी गुफ्तगू थी अताउल्लाह खानी से खेलवी के साथ, और अब उनका वो गीत जो उनके पहले एल्बम में शामिल था और जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अताउल्लाह ईसा खेलवी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ।
1: आप मुलाजमत की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि आपको रोजगार से मुतालिक रहनुमाई या मदद कहां से मिल सकती है? लेबर डिपार्टमेंट पूरे शहर में 10 जॉब सेंटर्स चलाता है, जहां मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बिल्कुल मुफ्त खिदमात फराहम की जाती हैं। आप किसी भी जॉब सेंटर में ताज़ा तरीन खाली आसामियों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ मौजूद एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र से मुलाकात करके अपनी रोजगार की ज़रूरियात पर बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे खसूसी रोजगार प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी मुलाजमत हासिल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। खसूसी तौर पर आप रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, जिसके तहत नस्ली अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रजिस्टर्ड सोशल वर्कर के जरिए केस मैनेजमेंट के अंदाज में एक ही जगह तमाम रोजगार मुआविन खिदमात फराहम की जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट अंग्रेजी और चीनी जबान में खिदमात फराहम करता है। अगर आप अंग्रेजी या चीनी नहीं बोलते तो महकमा आपके लिए मुफ्त तर्जुमान की सहूलत का इंतजाम भी कर सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए लेबर डिपार्टमेंट की इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस की वेबसाइट पर नस्ली अकलियतों के लिए मखसूस सफ़ा मुलाहिज़ा करें www.jobs.gov.hk/em या इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। धोबी की बीवी से मलका आलिया ने पूछा कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो? उसने कहा, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। मलका ने उसको मिठाई पेश करते हुए कहा, माशाल्लाह, फिर तो ये लो, इस खुशी में मिठाई खाओ। इतने में बादशाह भी कमरे में दाखिल हुआ। मलका को खुश देखा, पूछा, मलका आलिया, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खास वजह? मलका ने कहा, सुल्तान, ये लें मिठाई खाएं, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इस खुशी के मौके पर खुश होना चाहिए। बादशाह को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बादशाह ने दरबार को हुक्म दिया कि मिठाई हमारे पीछे पीछे दरबार में ले आओ। बादशाह बहुत खुश था। उसने कहा, सबको मिठाई बांट दो। मिठाई खाते हुए वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, आज मिठाई किस खुशी में आई है? बादशाह ने कहा, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। एक मुशीर ने चुपके से वजीर आजम से पूछा कि वजीर बातदबीर, ये चुन्ना मुन्ना क्या है? वजीर आजम ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं है, बादशाह से पूछता हूँ। वजीर आजम ने पूछा, बादशाह सलामत, ये चुन्ना मुन्ना क्या है? बादशाह सलामत थोड़ा सा घबराए और सोचने लगे कि वाकई मिठाई तकसीम करने से पहले मालूम तो करना चाहिए था, ये चुन्ना मुन्ना है क्या? बादशाह ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि ये चुन्ना मुन्ना क्या है। बादशाह घर आया और बीवी से पूछा, मलके आलिया, ये चुन्ना मुन्ना क्या है जिसकी वजह से आप इतनी खुश हैं और हम खुश हैं? मलका आली ने जवाब दिया, मुझे तो इल्म नहीं चुन्ना मुन्ना क्या है, धोबी की बीवी ने कहा था कि चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, मैं भी उसकी खुशी में शरीक हुई। धोबी की बीवी को बुलाया गया कि ये तो बता कि चुन्ना मुन्ना है क्या जिसकी वजह से दरबार में मिठाइयाँ बांटी जा चुकी। धोबी की बीवी ने कहा, चुन्ना मुन्ना हमारी खोती का बच्चा है जो कल पैदा हुआ है। सामईन, एक तवील अरसे से जारी पाकिस्तान आइडल के मुकाबलों का इख्तिताम गुज़िश्ता हफ्ते हुआ। बेहतरीन गुलकारी का ये मुकाबला हिरा कैसर के नाम रहा। इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं हिरा कैसर और रूहान अब्बास की आवाज़ों में गाया गया ये गीत।

अंदर को यू टर्न मारती हुई सड़क के उस तरफ एक फ्लैट में रहता था। उस पोच कॉलोनी के साथ साथ जाती सड़क के किनारे किनारे होटल, जूस कॉर्नर, फ्रूट कॉर्नर भी चलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक चौक अल्लाहू गोल चक्कर आ जाता है। वो जीरो पॉइंट जैसा है, इसलिए गोल चक्कर कहते हैं। इस चौक के दाएं तरफ एक नुक्कड़ थी जिस पर एक रेडी खड़ी होती थी। रमजान के दिन थे, शाम को तहरीन भाई अबू बकर भाई के कहने पर फ्रूट खरीदने निकल खड़ा होता था। मुझे वो उस दोराहे पर दूर से ही उस रेड़ी पर रखे तरोताजा और अच्छी रंगबू के फलों की तरफ जैसे किसी नादीदा कुवत ने ग्रेबान से पकड़ कर खींचा हो। मैं आसपास की तमाम रेड़ियों और कान पड़ती सेब इतने रुपए किलो, कितने रुपए किलो, जितने रुपए किलो, सब के सब नज़रअंदाज करता हुआ उस आखिरी और नुक्कड़ पर जरा हटके लगी हुई रेड़ी को जा पहुंचा। एक निगाह फलों पर डाली और माथे पे शिकन ने आ लिया। ये फ्रूट वाला चाचा किधर है? इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जी अजीब सा होने लगा कि मेरा जी ना करे यहाँ से किसी और तरफ से कुछ खरीदूँ। रमज़ान की उस नकाहत व सुस्ती की कैफियत में हर किसी को जल्दी होती है। इस शशोपंज में एक 11-12 साल का बच्चा गुजरा, मुझे देखकर ठिठका और कहने लगा, फ्रूट लेना है? मैंने सर ऊपर से नीचे हिलाया, हाँ। वो चहका, तो ले लो, चाचा रेडी पर नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब? फिर उसने इशारा किया, ये देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैंने घूमकर आगे आकर देखा तो वाकई एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर एक मोटे से मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं, मेरी 80 साल की माँ फालिज ज़्यादा है, मुझे हर आधे घंटे में 3 मरतबा खुराक और इतनी मरतबा उसे हाजत कराना पड़ती है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल कर इस रेगजीन गत्ते के नीचे पैसे रख दीजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से उठा लेना, इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। बच्चा जा चुका था और मैं हैरान खड़ा रेडी और उस नोट को तक रहा था। इधर उधर देखा, थूक निकली, पैसे निकाले, 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले अलग किए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100-50-10 की नकदी पड़ी थी, उसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मुतवज्जो हो और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। वापस पहुंचते ही उतावले बच्चे की तरह तहरीन भाई से सारा माजरा कह सुनाया। तहरीन भाई खुद हैरान से हो गए, अजब आज़ाद आदमी इतना भी तवक्कुल नहीं कर। फिर माँ की बात पर वो खुद भी आपदीदा से हो रहे, कहने लगे, वो रेड़ी वापस लेने तो आता होगा? मैंने कहा, हाँ आता तो होगा। इफ्तार के बाद हमने किक लगाई और तहरीन भाई के साथ वहीं जा पहुंचे। देखा एक बारिश बंदा आधी दाढ़ी सफ़ेद है, हल्के क्रीम कलर के कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था कि हम उसके सर पर थे। उसने सर उठाकर देखा, मुस्कुराकर बोला, साहब फल ख़त्म हो गया है, बाकी पैसे बचे हैं, वो चाहो तो ले लो। ये उसकी ज़राफ़त थी या शराफत, फिर बड़े इल्तिफात से लगा मुस्कुराने और उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे अभी हम कहेंगे, हाँ 1 किलो पैसे दे दो, और वो झट से निकाल कर पकड़ा देगा। तहरीन भाई मुझे देख रहे थे, मैं तहरीन भाई को, और कभी हम दोनों मिलकर उस दरवेश को। नाम पूछा तो कहने लगा, खादिम हुसैन नाम है। उस नोट की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुराने लगा, लगता है आप मेरे साथ गपशप के मूड में हैं। फिर वो हंसा, पूछा, चाय पियेंगे? लेकिन मेरे पास वक्त कम है, और फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो मफलूज भी हो गई है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, बाल बच्चा भी नहीं है, बीवी मर गई है, कुल बचा के अम्मा और अम्मा के पास मैं हूँ। मैंने एक दिन अम्मा से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी का तो बड़ा जी करता है, मैंने कान की लौ पकड़कर कसम दी, पर दस्तरस में कुछ भी नहीं है कि तेरी शायान, तेरे तुआम और रहन सहन का बंदोबस्त भी करूँ, है कि नहीं? तू मुझे कमरे से भी हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही कह क्या करूँ, अब क्या गैब से उतरेगा भाजी रोटी? न मैं बनी इसराइल का जना हूँ और न तू कुछ मूसा की माँ है।

0: क्या करूं? चल बता, मैंने पांव दाबते हुए नरमी और उससे लजाजत से कहा, जैसे ऐसा कहने से वो वाकई अनपढ़ ज़ईफ कुछ जावेदानी सी बिखेर देगी। हांपती कांपती हुई उठी, मैंने झट से तकिया ऊंचा करके उसकी टेक लगवाई और वो रेशेदार गर्दन थे चिचड़ती आवाज में दोनों हाथों का प्याला बनाकर उसने खुदा जाने कायनात के रब से क्या बात की। हाथ गिराकर कहने लगी, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, क्या बात करती है अम्मा, वहां छोड़ाऊं तो उचक्का सो चोरी के दौर दौरे हैं, कौन लिहाज करेगा, बिना मालिक के कौन आएगा। कहने लगी, तू फजर को छोड़ आया कर, बस ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर, तेरा रुपया जो गया तो अल्लाह से पाई पाई मैं वसूल दूंगी। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते फल ले जाते हैं, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं, अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है, कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कोई पढ़ी लिखी बच्ची परसों पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख गई अम्मा के लिए, एक डॉक्टर का गुजर हुआ वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्प पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत न समझे तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया, कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिज्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है, तेरा फल जो है ना अल्लाह खुद नीचे उतर आता है, वो बेच बाज जाता है। भाई एक तो राजिक, ऊपर से रिटेलर भी, अल्लाह अल्लाह। उसने कान की लौ पकड़ी, चाय खत्म हुई तो कहने लगा, इजाज़त, अब अम्मा खफा होगी, भींच के गुलोगीर हुए, मैं तो कुछ अंदर से तरबतर होने लगा, बमुश्किल जब्त किया, ढेरों दुआएं देता हुआ रेडी खींच कर चलता बना। मेरा बहुत जी था कि मैं इस चहीते खातिम की माँ को जा मिलूँ और अपने लिए दुआ करवाऊँ।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान, आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेज़बान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

0: ये शोक चंचल गीत था अहमद रुश्दी की आवाज में। अब आपको लिए चलते हैं जश्न आजादी के उस मुशायरे में जो 14 अगस्त की शाम लंदन के पाकिस्तान सेंटर में बज़्मे सुखन बरतानिया ने मुनक्किद किया। वहाँ हमने अपने जो अशार सुनाए उनमें से कुछ की झलक पेश है।
1: गज़ल के अशार पेश कर रहा हूँ, गालिब के मिसरे पे तज़मीन है। मैं फिर खड़ा हुआ हूँ सरेदार देखना, मैं फिर खड़ा हुआ हूँ सरेदार देखना, ऐसा किनाने कूचाए दिलदार देखना। और करते हो मुझ पे संगे मलामत की बारिशें, करते हो मुझ पे संगे मलामत की बारिशें, और चाहते नहीं मुझे संसार देखना, और चाहते नहीं मुझे संसार देखना। और शेर देखिए कि सूरज तुम्हारे सर पे उमूदन है आ चुका, सूरज तुम्हारे सर पे उमूदन है आ चुका, तुम चाहते हो साये दीवार देखना, तुम चाहते हो साये दीवार देखना। और शेर देखिए कि लड़ना पड़ेगी तन्हा ही तुमको बका की जरूरत, लड़ना पड़ेगी तन्हा ही तुमको बका की जंग, कोई भी साथ देगा ना सरकार देखना। जीना है घर तो इससे मिलाकर कदम चलो, जीना है घर तो इससे मिलाकर कदम चलो, बढ़ती रहेगी वक्त की रफ्तार देखना। और दिल में जो बात हो रहे लोके जबान पर, मना कि दिल में जो बात हो रहे लोके जबान पर, डर देखना किसी का न दरबार देखना, डर देखना किसी का न दरबार देखना। और अफी भाई आपकी नजरें से कि हम जैसे लोग फिर न मिलेंगे जहान में, हम जैसे लोग फिर न मिलेंगे जहान में, कुछ रोज बाद गर्मिये बाजार देखना। बहुत शुक्रिया। आज इसमें नए हैं तो सुनाए नहीं मैंने। यह है वो फूल कागज का बज़ाहिर हुस्न है जिसमें, यह है वो फूल कागज का बज़ाहिर हुस्न है जिसमें, मगर कितना ही सूंघो इसमें से खुशबू नहीं आती, मगर कितना ही सूंघो इसमें से खुशबू नहीं आती। वही करता है इजहारे तमन्ना लिख के रोमन में, वही करता है इजहारे तमन्ना लिख के रोमन में, जिसे इंग्लिश नहीं आती जिसे उर्दू नहीं आती। वही करता है इजहारे तमन्ना लिख के रोमन में, जिसे इंग्लिश नहीं आती जिसे उर्दू नहीं आती। और चार और इसमें ताजा हैं। क्यों निकाला था मुझे बताओ तो, क्यों निकाला था मुझे बताओ तो, एक नारा वो लगाकर छा गए, एक नारा वो लगाकर छा गए, रौनकें हो कसरे लंदन की बहाल, रौनकें हो कसरे लंदन की बहाल, वोट की इज्जत के दिन फिर आ गया, इज्जत के दिन फिर आ गया। चार मिसरे और हैं, कुछ लोगों ने सुने होंगे कि ढीठ होना भी एक नेमत है, ढीठ होना भी एक नेमत है, कुछ कहे कोई गम नहीं करते, ढीठ होना भी एक नेमत है, कुछ कहे कोई गम नहीं करते, एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, उस पर कोशिश भी हम नहीं करते।
0: लेबर डिपार्टमेंट 16 और 17 सितंबर को बैंकॉक के मैकफर्सन स्टेडियम में दो रोजा लार्ज स्केल जॉब फेयर बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर के नाम से मुनक्किद करेगा। मुख्तलिफ सनअतों से ताल्लुक रखने वाले लगभग 50 एम्प्लॉयर्स मुतअद्दिद अकसाम की मुलाजमतों के मौके पेश करेंगे। तकरीब के दौरान एम्प्लॉयर्स इन आसामियों को नुमाइश के जरिए मुतारिफ कराएंगे, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से बातचीत करेंगे और मौके पर ही दरख्वास्तें वसूल करेंगे। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस जॉब फेयर में शिरकत का मौका जरूर हासिल करें जो सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। शिरकत करने वाले इदारों और दस्तियाब आसामियों की तफसीलात के लिए बराए करम मुलाहजा कीजिए www.jobs.gov.hk. लेबर डिपार्टमेंट 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चुनवान जॉब सेंटर में नस्ली अकलियतों के लिए एक इंक्लूसिव जॉब फेयर का इनेकाद करेगा। 3 एम्प्लॉयर जिनमें शंग्रीला होटल कोरून लिमिटेड, सीसीजी प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड और द सर्विस हांगकॉन्ग लिमिटेड वगैरह शामिल हैं, 100 से ज्यादा मुख्तलिफ नौसामी पेश करेंगे, जिनमें ऑन साइट टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस एम्बेसडर, असिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर, क्लीनर, बिल्डिंग अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस सेंटर ऑफिसर, कंसर्ज असिस्टेंट, वैले पार्किंग अटेंडेंट, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, रूम अटेंडेंट, यूनिफॉर्म एंड लिनन अटेंडेंट, होस्ट होस्टेस, स्टीवर्ड क्लीनर और कॉमीज वगैरह शामिल हैं। ज्यादातर आसामियों के लिए महज थोड़ी बहुत चाइनीज जानना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स मौके पर ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू करेंगे, जहां मुफ्त तर्जुमान की सहूलत भी मैसर होगी। इस इवेंट के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। एथनिक माइनॉरिटी के जॉब सीकर्स को खुश आमदीद कहा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए देखिए www.jobs.gov.hk। हांगकॉन्ग की शाम आप सुन रहे हैं RTHK रेडियो 3 पर। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के तावुन से ये महफिल सजती है हरिद्वार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। हमारी नशरियात आप इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता 1 साल के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। विजिट कीजिए RTHK रेडियो 3 की वेबसाइट। आज की इस महफिल से अपने मेज़बान आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। शब बखैर और